2026 तक करवाए जा रहे हैं। चल रहे पाठां हाजरियां भरो जी। मिति 30/6/2026 नूं पाठां दी समाप्ति उपरंत गुरु का अतुट लंगर वरतेगा। साहिबजादा फतेह सिंह जी मंगल कराले चुल नगर कलोनी नदेड़ विखे हाजरियां भर के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। दूसरी बेनती की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का शहीदी दिहाड़ा 25 June 2026 गुरद्वारा बंदा घाट साहब विखे मनाया जा रहा है। इस अवसर से हजूरी रागी जथे वालों कीर्तन सरवण कराया जाएगा। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की साखी ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी वालों सुनाई जाएगी। उपरंत 11:30 तो गुरु का लंगर अतुट वरतेगा। संगतां हाजरियां भर के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं भव सबं सर्वदा सब जुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे पंगमि भूते देखते गोपते अनुसत वेदन ज्ञापत नानक गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल जी सहाय दरबार में तेरो दरबार सत सुन से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार।

तत्व प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभि

जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि अर्धस्तुहि भजस्तु अंग भजस्तु अंग।

त्वा प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गदहा विभूत दारि गिद्वा मसान वास करे हुई करत है घुगमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव वन साधई मरत है बिंद के सदैया ताय ही जिकी बडैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना दीन काम क्रोध में प्रभी ने एक ज्ञान के बिहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चारी छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पर बखानी ना है ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बसैया ताहे बांधरी गजैया कहे आदि से फिरैया ते भूत कह पछानी है जल के दरिया को गंगे ऋषि कहत जग आग के फछैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धे नचारे लिखे गए नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अडे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीट तना गूढ़ ताको भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल दे रहत है जो कि जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत के कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव कर हुई करत है चंद्रमात शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन कार फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताए है मोन दी मदार किते असुनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है पीरे ओ पिकांबर किते गाने ना परत है ते भूम हित होई के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के दाप को दलत है मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली शरद रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तो बुजी कपट भेष पोसती अनेक दानी वावत है शीश को कहा भयो मल्ल जब काढ़त अनेक

एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पटकत जग कान में खजूरा दस मूंड छटकत मित्र पुत्र हूँ शोक सो। आंख गोचरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सो। कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भछैया बोल पूछ लीजे जोक सो। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर

अपना स्थापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तब पायत अजाप देव बोधना सदैव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जब नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत कतरांड की परत कर पताल के बासी क्यों

रहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज हुई मान सब एक पयाने को भ्रमाओ है देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच होए सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच होए बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत, कित जल में डुबत, कित आग में जरत है। कित गंग बासी, कित मदी नाम कानीवासी, कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त, कित सुआ पे चढ़त, कित दुख को भरत है। गैन में उड़त, कित जल में रहत, कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दान बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी गस हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार बूझ हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गा हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मंडलीप हारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित

मित्र सो देव विखे भवाने अचित्रे नारायण न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्यो

चार चित्रंग स्वरूपं कहु परम पुराण गोपाल पावे कहु बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव वाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ

त्वा प्रसाद पाधड़ी छंद। अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वय अनाश अंतुट तेज अनुकुट भंडार दादा।

जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आस

नरेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न बात न मात पितं जे रचयं छत्रि छत्र छितं जे राग न रेख न रोग वर्णं जे द्वैख न दाख न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो श्रे सिंध रुबिंद नगिंद नगं श्रे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत ज्योत भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न सोग न भोग भुअंग जेह जम्पह किन्नर जच जुअंग नर नार न पुंसक जाहे किए गण किन्न

न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेद है बलि अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है भूम विज है सदा छिज तेज मानी है न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है दोख है अदाग है अक्षय प्रताप देखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है न छल है न चित्र

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपे बिसेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदैव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है।

सोद सोद हटे सब असुर विरोध दानव सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गर्व पढ़त पढ़त थके महा

अर्ध आदक वेद व्यासक मोहन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नहे पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को

0: जाफर अंगे तेज प्रवलंग गुड़िया फंदे आए मंगल से गुड़िया मंगल पाल सुरंग से मस्ताय जस्तु रूप फंदम के शतल जम के हम गुमनम के आल जन हो सिर मथा मुंडवा रन हो पर जन तरफ गुणा करना रन को पता रंडा से रंडन मुंड में मुंड खंड से रंडन रंडन के तेरे नाम नीत तमाम कण सजा हो रे कण बने कारण जोत जते कण पण सरदार विन पर खंड तो प्रकार खंड तो प्रहार पण दुष्ट मथे के जाय जाय हो सिर मथा रे
1: कारण करिए लेकर वही ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋ ਕੋਰੇ
0: अंजन वीर है निरंजन प्रवीण है सर्व के अधीन है कटिल नम दाले के देवन है देव महादेव के देव नाद को मेरे मैया मोहिले मन बाल के भुजिया राधा के राजा महाराज मुख सजा जा जो गंग जो राज धरिय जल मसालो के का जो लग करिय के बुद्ध बाल को हर है सिद्ध तार साथी है के काल हर को चाल के साथी है के काल धीर गति धीरा मत छा सके जिस छीने रक्षा चीकार के सिखा के तार धने को बोल के हर के सिद्ध बंगार में धीर रसि को सेना बाद संग पूरब बलाव काम रूप कमाओ सब तलवार में बिना रूप होता हम जाई खबर है पूरब ने भरा जब जन धर्म कर दया तब ना तब नहीं रात तेरा नहीं कौन है पाकी रत भाई तो प्रसाद बाद प्रसाद

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हंदरिया भरदे होए कीर्तन दे सतगाव जो संगता वालों बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जो मसना दे रुकता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी सिखो शब्द प्यारियो जान

कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संहरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता, जे असुध जताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

चौपाई सम्मत सत्रह सहस भणि जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रो सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रो ग्रंथ सुधारा इत सरे चरित्र।

प्रत परिया चुन चुन शत्रु हमारे मरिया देग तेग जग में दो चलै राख आप मोह अवर न दलै तुम मम करो।

सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, सब तज नाथ एक शरण आयो, सकल द्वार को